0: आज मैं रिकॉर्डिंग है गड़े 21 मिनट में दिव्य राज्य का डॉल मंगने से मैंने बात जर हिंदू ने स्कॉट खिदमत के सब मुतम कुरा फायद है कुबह है मैं दौड़ मंगा मालू के ये कि स्कॉट दोस्त का मैं बुमाया कि वर मुहिम वाहत के और मैं हार्डवे गोसोन स्कॉट हरकत तक आबे है गौतम स्कॉट फेशगन दे गोता बे है गौतम वर गिर मालूम है लिफ एंड नमस मैं और उम्मीद वाहत कल ने स्कॉट खिदमत के सब मुतम कुरा फायद है कि कुबह है
1: याद then oti lava request kurebun hagadi fansa ha hamen algad me furset me holwa le detto me do me hargadi hagadi 22 minute hingi then scout ke wahaga da kamun daaru ka scout haraka rajya ke fula kurma waragina masakite ke kuren jehifwa kama raisul jumhuriya dr mohammad moizis on miwani vidalefa adi mi hatana rajya ke mi haraka kurie gengosweni waragina gunjehunta kaayko kamasha wannani imarat ne ti pawefa hunna en imaratun anin imarat badaluma ki wanje hene gun nun kam beswani rais faha kurewafa ege ithurun kuriyang uttanuga rajya ga scout haraka fula kurma sarkar ge faratun furima e parlame e libene kamge yakin kam ves rais de wafani egotun umrani wasila tau ge ithurun mali e hitiri kam ves stefani kam bani vidal farang u faveri habar de to kom me kasmiyati
0: ad rais de jumhuriya ke de mihar de scout ga me chief scout ta de
1: ad ad
0: de var gina muhim wahat ga me scout ga harakat ka be egotun yes libene go sone tibe hon khial fur ta hisa kurman gendo al me number ke tine tine hatres sumeng hai sumeng hai ege turun tibe funa piese me amedero ko khyal phal kurben nan not kurben adi ege turun tibe funa me lave de odatan fursat hagad fansa me fursat ko ben kurban ko manu ummed kurane scout khidmat sawab mutme kurra fayda hai ko bah ko der ko tere tibe funa alun badal kollana
2: ikea presents
3: bajwer hinai
4: IKEA Opticals in enhas rufiyai mate gewe faria kurab wage nasibiri farataka debe fulaka drum loan umra dature mi promotion ga hedu kurak komme enhas rufiyai ka coupon ne mi ge iturun tafato ek brand takun 30% hame discount adi komme thing has rufiyai mate kurab wage faria ka fasate rufiyai gift voucher adivas adivas nasiba gwasan kolle mang ailaya ratte hinnaiku avahan IKEA Opticals ziyara kurabwa

0: जादू के राज
1: मेहरगढ़ नगढ़ तेवीस मिनट नवारसी कुंत तिब्रगढ़ समिति केन्द्रनी दिव्य राज्य गाड़ू मिगढ़ी अलगढ़ मिंगखोरी मिगेंदनी आदुगे राज्य प्रोग्राम इस मिय दो दिह गढ़ तिरी हमें अलगढ़ मिंगखोरी दानं अलगढ़ में हम मिय दो इस बाला लान कंत तक तेरे का कैलेंडर खिद में दो हक मालो मिगे तुरंग आवस खड़े कों आदुगे खास समी बाय बस बाला लान आवस खड़े कों मी बैग अलगढ़ में बाला लानी दिवे सरकार के गजेट का कानूनी को तो शाय को फाली उन तक मालूम अदि एयरपोर्ट तक गायम को फा सरहद तक के मौसमी मालूम मेगे तुरु अदु के खास समी बैग अलगन में गेरस्तेनी काउंसिल तक अदि मौससा तक में से दोहा को कुरिय के दंग हम जेफा कंका मुगे मालूम मेगे तुरु दोह मौसम वे सरन में बालाना मौस एगो तो अलगन में बालालानी राज्य के एयरपोर्ट तक गायम करे फसरा दुगे मौसमी मालूमात

0: टेक टॉक्स
1: में प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कम फसे है गोते मियोती फाहिपे ऐप बिल तक अंगारा जुमला अदा दू फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला देंगा महुरी हा बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी फोन फेंग गैस अदि मीडिया नेट बिलकस देख के ने रीलोड रास्टस नूनी डेटा पेक्विस नेगे नेंगे मी हम डिजिटल वॉलेटे देने मस देबे वैरु बिल नु देखी गेंग लारिया वीनुए नेंगी गेंग उले कर नुचे ने हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे मा फाही
0: टेक टॉक्स टेक्नोलॉजी के दुनिये आबदुस्तनी बार दुएली के कुरिया सीही गोतुना उम्रानी गोतुम वेस एतंग इंगिलाब तके मी दुनिये वुजू दकिनस्ते साइंस आ टेक्नोलॉजी के दुनिये अन्न एमए फहुगे मौलूमा तकायको अन्न हफ्ता के होनिहिर दो हम मिगडी का बदल कोलाना हुरी हाय हुन तेरिम वेस इंतजार कुरवान कम उम्मीद कुरम वकिवेलंग अस्सलाम वालेकुम।
3: प्रोग्राम का बावरवी अमनत रामला आयशत नईमा अति अजीजा फारूक हुशेरी फहीदा इब्राहिम उफती मूसा रश्वान

0: Gigi. Oh, com'è scherrina.
1: ठीक ठीक बोलो कि रात के 2 बजे रुदाली खाई बनी हुई हो।
2: कुत्ता जी है ना, उनका दिल तो गया
1: अचानक।
2: अरे उनका दिल तो हमारा घर में हुआ है।
3: आज हम करेंगे चौंका देने वाला खुलासा उस हत्याकांड का जिसने मचा दी पूरे शहर में खलबली।
4: कुत्ता जी गायब है।
1: आप बात कर रहे हो?
5: शादी का जगराता है, जरा भी शर्म है तुमको?
1: पुलिस को बता दो।
6: सत्यवती का बात सुनोगी ना तो उल्टा फंस जाऊंगी, बता रहे।
1: खत्म।
2: मम्मी, गुप्ता आंटी आई है।
1: टॉयलेट इधर है ना? अचानक?
5: ये अचानक ही तो होता है।
7: छिपा नहीं पाओगी।
1: सबका नजर हम तीनों पर
2: है। हम भी जा रहे हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा।
5: अगर हम जेल गए तो तुम दोनों को साथ लेके जाएंगे।

0: कहाँ है मैच?
1: चांद पे।
0: चांद पे मैच है? अच्छा मून पे है, ठीक
1: है। कभी मून?
0: मैं नहीं, वो जेफ बेजोस और एलन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे।

0: 말도 다툼이구나도.
1: 버타니 깨워게 아무지. 나 옛날 색깔 위니 그런 거.
0: 뭐가라 말이 샤디 오브이 또? 별 위니 그런 게 있어? 하만은 해시 가만스타나 하만은 또
2: 호시야리갸 하만은 잡아싸 지야 맨 맹이 잡은 거 맞다 애미라 지야
0: 난 शायर की जुबान ही अच्छी लगती है
3: शहर है लोग हैं भीड़ है काम है
4: जाए यहां से मैं नहीं जा रहा कर लो जो करना है मैंने कहा था बंटवारा करो और ये जगह हिंदुस्तान में है नए मुल्क में कैसे बता
0: पंजाब दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया
5: लगता है कोई पुरानी बात फंसी है उनके दिल में वो बता भी रहे हमें लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही
6: समझ में कैसे आएंगे ये उनकी तकलीफ है और उनके साथ चिता में जाएगी वो
0: नहीं।
1: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है

0: वैसे पापा आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो।
1: क्या चाहिए?
0: तारीफ हजम नहीं होती है आपको।
1: अरे पिछली बार जब मैं हैंडसम लगा था ना, 40,000 का फोन खरीद के देना पड़ा था।
0: उसे समझाने की नहीं, हमें उसे समझने की जरूरत है।
2: हमेशा सोचती थी मेरे और आर्या के बीच सब ठीक हो जाएगा, सब खत्म हो गया।
3: मेरा नाम दयाशंकर कपूर है, बट यू कैन कॉल मी टीके इन शॉर्ट। भोलेनाथ की कृपा है कि इंसान की राख से उसकी कुंडली निकाल लेता हूँ।
1: शरीफ हो, बेवकूफ नहीं। मुझे तो लगता है कि गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है।
4: अब मुझे नहीं पता जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है।
0: गलत है। आप यहाँ स्कूल में?
1: This is your last chance.
4: भोलेनाथ पे भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर देगा।
0: भगवान हर जगह नहीं होता है डीके जी,
4: इसलिए तो उसने माँ बनाई है।
5: और आपने उन्हें बताया नहीं
0: क्या
5: कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ मैम?

0: हांगहार
1: अंगार दो मिंदुर कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तिरी हूं आदि बुद्ध दो होगे रे मिंदम बार गड़ तिरी हूं
0: हांगहार
2: हमें कनी दिवे ही राज्य क्या डूं